0: बोले श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय।
0: श्री देव पुरुष महादेव
1: की जय। ओ माय फ्रेंड, आई एम बेडिंग इन द ओशन ऑफ ब्लिस व्हिच इज एंडलेस एंड डिवाइन। आई एम बेडिंग इन द ओशन ऑफ माय हार्ट।
2: O můj příteli, koupu se v oceánu nekonečnosti, v oceánu blaženosti, tento oceán je v mém srdci.

भगवान की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री चंदन देवी जी माता जी की जय। श्री साध्वी पूजनंद भरती जी महाराज की जय।

0: या भी
1: श्री दीप नारायण भगवान की श्री श्री देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की देवादि देव देवेश्वर महादेव की अलकपुरी जी महादेव की जय। 11 times reciting the Om. There are different centers.
0: Vannak különböző központok.

dress. And this dress will not let come in your body and in your mind negative things. So this is a very ancient uniform for the brahmachari, yani vidyarthi, yani student. They have nothing to do except study. Those who studies, their fruits of their study will come in the future. And the future you will be so happy that you had an education which is a cultural, traditions, ethics, morals, and spiritual education. Indian culture, Indian tradition, Indian education from the ancient time was leading the world into the peace and divine. In the Indian education system, there is no aggressivities. They were not aggressive. So, in our Gurukul, we have a different education, not this modern education where they are only want to work and earn money, earn money, earn money. It is very funny to earn that only money. So, हमें तो ज्ञानार्जन करना है, पैसे की बात नहीं करनी है, हम पढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे, ये भाव नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों के अंदर, क्योंकि वो पैसे जो हैं, जो तुम सोचते हो, वो तुम्हारी विद्या के अंदर हैं, और वो पैसे इतने तुम्हारे मस्तिष्क रूपी बैंक है ये, इस बैंक के अंदर में जमा हो जाता है और हाथ में से तो रुपये चोरी करके ले जाए, घर में रुपये बड़े चोरी करके ले जाए, लेकिन जो मस्तिष्क के अंदर ज्ञान रूपी धन जो है वो कोई नहीं ले जा सकता है. इसीलिए विद्यार्थी का एक ही संकल्प होता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, बड़ा होकर के मेरे माता पिता, मेरी समाज और मेरा गांव, मेरा देश और सब पूरे विश्व को शांति का संदेश दूंगा. बस तो लक्ष्मी, पैसे तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा. वो कहना नहीं है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए. अगर तुम्हारा अध्ययन इतना अच्छा है तो ये 5 लाख की जगह आपको 15 लाख रुपए देंगे कि लेकिन हमारी कंपनी में काम करो. ले ओ, एक महीना रहा 15 लाख, अपाओ तो थैला में उठी जाए कोई नहीं. 15 लाख रुपए उठा सकते हैं हम? अरे बहुत. तो वो मस्तिष्क में नहीं उठता है. 15 करोड़ इतो बाहर है कि तुम्हारे सिर पे उठा नहीं सकते हो, लेकिन वो 500 करोड़ तुम्हारे मस्तिष्क की रूपी बैंक के अंदर में वो वहां हो जाएगा जमा, और चाहिएगा जितना ही लेते जाओ. और वो पैसे जो है जो हमारे मस्तिष्क में है वो कभी भी खत्म नहीं होता है. जैसे कि कुएं के अंदर पानी का स्रोत है, कितना ही पानी निकालो वो तो पानी अच्छा ताजा पानी आता ही रहेगा, आता ही रहेगा. तो ज्ञान जिसने सीखा है गुरुकुल के अंदर भारत की संस्कृति के अनुसार और भारत की विद्या ऋषि मुनियों के अनुसार हम करेंगे तो मालो माल है. सो द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चर, the language, the first language what we call is Sanskrit. Sanskrit is the mother of all the languages around the world, maybe 2-3 not. Everywhere there is the words of the Sanskrit language.

एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरे 365 दिन की पढ़ाई कर सकते हैं, पूरे 6 महीने की पढ़ाई कर सकते हैं एक रात में, वो एक रात भी नहीं 2 घंटे में। अब यहां से रवाना होकर के 9 बजे बैठेंगे पढ़ाई करने में, 11 बजे समाप्त, सुबह एग्जाम दे देंगे और एकदम 100% मार्क्स आएंगे, संभव है या नहीं है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो पढ़ना होता है रोज डेली, तो पढ़ाई टुकड़ों में होता है, जैसे खाना टुकड़ों में खाते हैं। हर दिन 5 रोटी खा सकते, कोई टेंशन नहीं, 10 रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन 900 रोटी खा नहीं सकते। तो वैसे ही रोज 900 पेज थोड़ी पढ़ सकते। हमारे पास जयपुर में भी बच्चे आते ओपन स्टडी करते, 3 दिन में 800 पेज की किताब कैसे पढ़ेंगे? इसलिए जो स्टडी कर रहे हैं, अगर डेली हर दिन अगर आप मांग के चलो 1 घंटा पढ़ाई होगा, तो 6 महीना कितना हो गया घंटा? 180 तो हो गया, नहीं हुआ तो 180 घंटा आप एक दिन में कैसे जमा दोगे? तो इसलिए जो पढ़ाई करनी है वो टुकड़ों में करते रहना। अगर डेली 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते हैं, 1 घंटा, कोई चमत्कारी कारण से 2 घंटा पढ़ेंगे, पता नहीं क्या होगा कि अब 3 घंटा भी पढ़ सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आपकी मार्क्स जो आएंगे, आपकी कोई ट्यूशन व्यूशन की जरूरत नहीं होगी, आपकी जो IAS IPS बनना है सब बन सकते हैं, लेकिन पढ़ाई अगर ऐसे टुकड़ों में करते रहेंगे, अगर एक साथ में कोशिश करें तो क्या होगा? असंभव। इसलिए आपकी यहां आश्रम में रहते, यहां कोई घर की टेंशन है ही नहीं कि कोई माँ बाप कोई काम बताते नहीं, तो आपका क्या काम होगा? पढ़ाई का। इसलिए माता पिता ने आपको यहां भेजा पढ़ाई करने के लिए, और आप यहां क्या करते? मजे ले रहे, सोते रहते, मोबाइल में मूवी देखते, यूट्यूब फेसबुक सब कुछ होता है ना? क्यों? जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, जब तक हम हमारे गुरुजी आ है तब तक स्कूल चलेगा, और गुरुजी को कैसे खुश कर सकते हैं? कम से कम कोई तो मार्क्स आए, अगर मार्क्स आएंगे तो कौन, हमारे गुरुदेव भी खुश होंगे और क्या माता पिता खुश नहीं होंगे? अरे मेरा बेटा 95% आ गया, अभी है कोई यहाँ 95% के 100% के 80? इसलिए ये नहीं होता है कि हम पढ़ाई करते अचानक एग्जाम से 1-2-3 दिन पहले बस एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम में पढ़ाई करना है। अब आप क्या कर सकते हैं? कल तो गुरु पूर्णिमा थी, तो आज से संकल्प ले लो कि आज से मैं पढ़ाई रोज करूंगा और करते रहूंगा। पढ़ाई की अंत कभी होगी नहीं, पढ़ाई तो कुछ भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। सो नॉट ओनली दैट वी हैव ज्ञानपुत्र प्रोग्राम हियर, वी हैव ऑल्सो आवर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गुरुदेव वी हैव योगा प्रोग्राम्स हियर, एंड वी हैव मेनी आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम West who are coming and who are studying, some for the longer times, for some for the shorter time. And this is just that to see that learning never ends. And learning comprises also of the physical part, which we are trying to do here with the yoga, spiritual part with Swamiji's teachings of Ramayana, Mahabharata and other Upanishads,

बस अब मेरी तरफ झुक, आज देख लो इस कैमरा में, देखो दिख रहे हो तुम लोग, तुम दिख रहे हो पीछे ये खड़े हो, बैठ जाओ बस, थैंक यू। सो टुमारो वी विल अगेन हैव द वेबकास्ट ऑन अदर सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी इन द स्कूल व्हेन वी हैव द प्रेयर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स देयर। नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद, दिख रहे हैं सभी के, नहीं दिख रहे? यस, टाइम फॉर प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ अपने यहाँ हर महीने में एक दो बार, और मैं आऊँगा तब तुम्हारे को पूरे संसार की यात्रा करा देंगे स्वामी जी टेलीविजन के वजह से।

0: शांति शांति शांति।
1: विश्वगुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: हरि ओम।

ओम नमो श्री प्रभुदीप नारायणम। दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की, अलकपुरी जी।